तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

कभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

परम सद्देश हम सभी के हृदय में विराजमान पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। इस दृश्य को देखने के लिए कई सालों से नजर तरस रही थी। अध्यात्म के मार्ग पर परमात्मा की खोज में चलने वालों के लिए अनुभवी लोगों ने गहरा रहस्य खोला था, भगवान तुम्हें मंदिर में नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह रहस्य प्रदान किया था, यद गीयन्ते मद्भक्ता तत्र वसामि अहम्। जहां मेरे भक्त मेरे गीत गाते हैं मैं वहां रहता हूं। भगवान मंदिर में नहीं मिलते, वो भक्तों के हृदय में मिलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान की खोज करनी हो तो भगवान के भक्तों की खोज करो। महाराष्ट्र में इसलिए बहुत सुंदर वारकरी संप्रदाय की परंपरा है। जो जो भेटिला भूत तो जाने से भगवंत। और ये केवल उनके यहां उक्ति नहीं है तो कृति है। एक अनूठा नजारा वारकरी परंपरा में चलता है। कीर्तनकार गुरु प्रवचन शुरू करने के पहले उसके फॉलोअर्स, उसका शिष्य या उसका जो जो भी गांव का व्यक्ति होता है, वो पहले वीणा लेकर के भजन अभंग गाना शुरू करता है। और अपने समय पर जिसमें कीर्तनकार गुरु आते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, उसके चरणों पर मत्था टेकते हैं। जो वीणा वादन कर रहा है और उसको प्रणाम करके ही वो वीणा को ग्रहण करते हैं। ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, प्रभु के भक्ति में जो तन्मय हो गया वो भगवंत है। और भगवंत की आराधना शुरू करनी है तो पहले जो भक्ति कर रहा है उसको प्रणाम करके ही शुरू हो सकती है। और इसलिए मैंने मेरी बात शुरू करने के समय में एक बात बोली कि आपके हृदय में मेरे हृदय में विराजमान आराध्य गुरुदेव को प्रणाम। मेरे लिए आप गुरु मंदिर हो।

आपकी श्रद्धा में, आपके समर्पण में, न केवल मुझे, हर व्यक्ति को गुरुदेव के दर्शन होते हैं। यही तो गुरु तीर्थ यात्रा है। और महसूस कर सकते हैं आप मेरे साथ कि इस समय इस पूरे संसार में आपसे और मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। अरे भाग्यशाली हमको बनाने वाले हैं आराध्य गुरुदेव। हम अपने कर्म से भाग्यशाली नहीं है, हम हमारे पुण्य से भाग्यशाली नहीं है। एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं तो मेरी बात से आप गहराई से सहमत हो जाओगे। चंड कौशिक जहां था वहां से गुजरना कोई पसंद नहीं करता था, और कोई गुजरता तो जिंदा नहीं रहता था। जिन्होंने चंडकोशी को देखा नहीं वो भी चंडकोशी को बदवा देते थे। जिनका किसी का चंडकोशी ने कोई नुकसान भी नहीं किया, चोट भी नहीं पहुंचाई, वे भी चंडकोशी के विषय में अच्छा नहीं बोलते थे। और तीर्थंकर परमात्मा की कृपा उस पर बरसी, उसने अपनी आंखों से तीर्थंकर परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लिया। और उसके बाद जैसे लोगों को खबर पड़ी कि चंडकौशिक अब भगवान महावीर का भक्त हो गया है, उसके आंखों में अब गुस्से का जहर नहीं है, अब उसके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि लोगों ने वहां जाकर के उसकी पूजा शुरू कर दी। वो चंडकौशिक की, जिसको लोग मृत्यु समझते थे, और उसी चंडकौशिक के हृदय में जब प्रभु विराजमान हो गए तो लोग उसकी पूजा करने लगे। और पूजा में वहां दूध चढ़ाने लगे। और चंडकौशिक बिल के अंदर नहीं गया था, जा सकता था।

भूमि पर मुझे मेरे प्रभु मिले, उस भूमि को छोड़ करके मैं बिल में नहीं जाऊंगा। और इसलिए उसने केवल अपना मुंह बिल में डाल दिया। और मुंह बिल में डाल करके वहीं वो परमात्मा के अनुभूति में तन्मय होकर के रहने लगा है। श्रद्धालु आते, दूध चढ़ाते, तीर्थंकर के भक्त से किसी को डर नहीं लगता है। और जिससे डर लगता वो तीर्थंकर का भक्त होता नहीं है। गुरुदेव के भक्त से किसी को डर नहीं लगता, और उससे भी किसी को डर लगता है तो गुरुदेव का भगत नहीं है। लोग उस चंड कौशिक की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था, न चंड कौशिक ने सोचा था कि मेरी कभी पूजा होगी। दुराचारी कैसे सोच सकता है कि कभी मेरी पूजा होगी। लेकिन उस दुराचारी का जीवन भी बदल जाता है जिसके हृदय में जाकर के प्रभु विराजमान हो जाते हैं और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति में दूध चढ़ा रहे हैं। और दूध की मिठास से चींटियां आ रही है। चींटियां उसको काट रही है। क्या उसने भक्ति में कायस्वर्ग किया? क्या उसने श्रद्धा में प्रभु को धारण कर करके कायस्वर्ग, क्या स्थिर शरीर हो गया उसका कि चिट्ठियां काट रही है लेकिन वो जगह नहीं छोड़ रहा है। ग्रंथकार कहते कि चिट्ठियों ने उसके पूरे शरीर पर काट काट करके उसके शरीर की चालनी बना दी। करना क्या था, केवल उसको बिल में चला जाता है, इतना ही तो करना था। और बिल में चला जाता तो कोई चींटी उसको काटती नहीं। लेकिन वो चंड कौशिक उस जगह को नहीं छोड़ता है जहां उसको प्रभु मिले। उसको छोड़ता नहीं है वो। कि जहां उसको प्रभु मिले, चिट्ठियां काट रही है लेकिन उसको पीड़ा नहीं हो रही है। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। एक केंद्रीय जितने जीव है, वनस्पति, पृथ्वी, आप, देवो, वायु, इनको हम स्थावर जीव कहते हैं। इनको दुख भी मिला, सुख भी मिला तो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जहां दुख मिलता है वहां रहते नहीं है। वे वहां से भागते हैं, जहां से दुख मिलता है वहां टिकते नहीं है, और जहां सुख मिलता है वहां से हिलते नहीं है। इस तरह से जीव के सहज कर्म का परिणाम है, इस तरह से नाम कर्म का चरित्र है।

0: जहां उसको दुख मिलेगा वो तन का दुख मिले कि मन का दुख मिले वहां से वो भागेगा। ये आपका भी स्वभाव है, ये मेरा भी स्वभाव है। जहां आपको दुख मिलता वहां बैठोगे? नहीं। खटमल को धूप में छोड़ो तो धूप में रेता नहीं हो, किधर जाता है? छांव की तरफ जाता है। जहां दुख मिलता है वहां बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीव, उसको भी इतनी अक्ल है, बेन्द्रिय जीव को भी इतनी अक्ल है, तेन्द्रिय जीव को भी इतनी अक्ल है। अरे तुम्हारा हाथ मच्छर के पास पहुंचता है उसके पहले मच्छर उड़ जाता है, उसको पता चल जाता है कि दुख के स्पंदन आते भाग जाता है। जहां दुख मिलता है वहां त्रस जीव रहता नहीं है, उसकी यात्रा किधर चलती है? जहां सुख मिलता है उधर उसकी यात्रा चलती है। शक्कर कहां है ये चींटी को कौन बताता है? और शक्कर तक पहुंचने का सेफ रास्ता कौन सा है ये चींटी को कौन बताता है? ये उसके अंदर की जो तड़फ है सुख को पाने की, वो नाम कर्म की, उससे उसको रास्ता मिल जाता है। चंड कोशिक भी सन्नी पंचेंद्रिय त्रस है। कौन सा जीव है? सन्नी पंचेंद्रिय त्रस है। और त्रस जीव का स्वभाव है जहां दुख की अनुभूति हो वहां रहना नहीं। और चंड कोशिक वहां से हिलता नहीं है, चिटियां काट रही है लेकिन वो हिलता नहीं है, क्योंकि वहां उसको दुख की अनुभूति नहीं हो रही है। वो तो केवल एक अनुभूति में है, एक संवेदना में है कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन हो गए, उनके आशीर्वाद मिल गए, ये भूमि मेरे लिए तीर्थ है, इस तीर्थ को छोड़कर के मैं कहीं नहीं जाऊं। चंड कोशिक ने निर्णय कर लिया है। और चिटियां काट रही है ग्रंथकार कह रहे हैं, लेकिन चंड कोशिक को वेदना नहीं हो रही है, इसलिए चंड कोशिक वहां पर है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, न्यू जनरेशन को जब गुरुदेव का चरित्र सुनाता हूं तो उनके मन में सहज एक भावना, एक दुख, एक पीड़ा जन्मती है। क्या हम कितने कम नसीब हैं कि उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। एक केवल नगर की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे जोधपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे चेन्नई, चाहे बेंगलोर, चाहे सिकंदराबाद, चाहे पंजाब, जहां जहां गुरुदेव का जन्मोत्सव में आनंद गाथा का गान हुआ वहां कम से कम 20-25 लोगों ने आकर के अपना बदनसीबी का रोना मेरे पास जरूर रोया कि हम ऐसे महापुरुष के दर्शन नहीं कर पाए। और कितने हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिस भूमि पर गुरुदेव सालों तक रहे हैं, जहां उनके साधना के सिद्धि के स्पंदन है, वहां सांस लेने का सौभाग्य मिला है। उस भूमि पर उनको स्मरण करने का, उनकी भक्ति करने का अनूठा अवसर मिला है। आप समझ सकते हैं उन बहनों की भावनाओं को, उन तपस्वियों को, उन गुरु भक्तों को। जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन नहीं करे थे, केवल आनंद गाथा सुनकर के जिनकी तमन्ना हुई कि हमें अठाई करनी है, और अठाई करनी है तो घर पर भी रह करके अठाई कर सकते थे, पचका होने के दिन यहां आ सकते थे। जयपुर से केवल अठाई की धारणा करने के लिए या आने के पीछे इंटेंशन क्या है? जयपुर से, नागपुर से, बंबई से अठाई की धारणा यहां करके करने के लिए इंटेंशन क्या है? मुझे उसी भूमि पर गुरु अठाई की धारणा करनी है कि जिस भूमि पर गुरुदेव विराजमान थे। किस भावना से वो बहन जयपुर से चली होगी, किस भावना से नागपुर से चली होगी? क्या धारणा घर पर नहीं हो सकती थी? और वे बच्चे अठाई कर रहे हैं जो 10 और 11 साल के हैं, जिन्हें पिज्जा और बर्गर वे अठाई कर रहे हैं। इतने नन्हे नन्हे बच्चे, क्या उनके परिवार ने भक्ति का माहौल बनाया होगा? ऐसी नजर बनाना कि लोग अपनी नजर देखने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। ये नजर जन्म से नहीं मिली ना। जैन दर्शन की मेथोलॉजी में किसी भगवान का जन्म नहीं होता है। जन्म तो सामान्य व्यक्ति का ही होता है। वो प्रसंग तो शायद आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक गांव में टूरिस्ट लोग पहुंचे तो वहां चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछा, इस गांव में कोई बड़े आदमी का जन्म हुआ क्या? और गांव वाले ने जवाब दिया, यहां तो बच्चे ही जन्मते हैं। कौन जन्मते हैं? बच्चे ही जन्मते हैं। कई बड़े आदमी का जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है? बच्चे का ही होता है। कोई बच्चा बड़ा हो सकता है, कोई बच्चा श्रेष्ठ हो सकता है, कोई बच्चा भगवान हो सकता है, और कोई बच्चा शैतान भी हो सकता है। उसने भगवान बनना कि शैतान बनना, ये डिसीजन बच्चे का नहीं है, ये निर्णय उसके कर्म का नहीं है, ये निर्णय उसके भाग्य का नहीं है, ये निर्णय उसके बुद्धि का नहीं है, ये निर्णय उसके पूर्व जन्म का नहीं है। ये निर्णय करने की अक्ल उसको किसी ने दी है तो परिवार ने दी है, उसके मां बाप ने दी है। यदि अक्ल उस बच्चे को नहीं देते, जिस समय इस अक्ल के बच्चे ने डिमांड नहीं करी थी, ये अक्ल कब दी जा सकती है? जब तक बच्चे को अपनी अक्ल नहीं आए तब तक ही अक्ल दी जा सकती है। बच्चे ने कौन से रास्ते पर चलना यह तब तक ही सिखाया जा सकता है जब तक बच्चा अपना रास्ता तय नहीं करे। बच्चे ने जिंदगी में क्या बनना यह तभी उसको दिया जा सकता है कि जब तक बच्चा अपना निर्णय नहीं करता है। एक बार बच्चे ने निर्णय कर लिया कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, उसके बाद मां बाप उसका रास्ता चेंज नहीं कर सकते। इतनी सी तो सारी जिंदगी की शैतानियत और भगवत्ता का रहस्य है। मां हुलसा ने निमिचंद को उस समय रास्ता दिया, उस समय भगवत्ता का पथ दिया, कि जिस समय बच्चों को पता नहीं था कि भगवान का मार्ग कौन सा है और शैतान का मार्ग कौन सा है, कल्याण का मार्ग कौन सा है और पाप का मार्ग कौन सा है, बच्चे को पता नहीं था, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था और उसने चुनाव नहीं किया, उसने केवल स्वीकार किया। और एक उम्र होती बच्चे की, तुम्हारी भी थी मेरी भी थी, कि जिस समय तक अपनी खोपड़ी चलनी शुरू नहीं हुई थी और उस समय जो मिल गया उसी ने जीवन का पूरा पूरा पूरा पूरा ब्लूप्रिंट लिख दिया। यदि सामान्य तर्क की भाषा में बोलना हो, दूध में दही का जावन कब देना चाहिए? दूध पूरा ठंडा होने के बाद, हेलो, दूध फटने के बाद कब देना चाहिए जावन? वो पूरा गर्म भी नहीं रहे और पूरा ठंडा भी ना हो। उस समय जावन दे दिया तो दूध ने क्या बनना ये दूध नहीं तय करता है, जावन देने वाला तय करता है। और उस समय जावन नहीं दिया जिस समय दिया जा सकता है, और उसके बाद दूध फटने के बाद जावन दोगे तो दूध दही बनेगा क्या है? मां हुलसा ने उस समय गुरु का जावन दिया, प्रभु का जावन दिया, जिस समय नेमीचंद का दूध फटा नहीं था, दूध ठंडा भी नहीं हुआ था और दूध इतना गर्म भी नहीं था। इसलिए जिन्हें शासन में विधान है, 8 साल के पहले बच्चे को दीक्षा नहीं दी जा सकती, 8 साल का होने के बाद दीक्षा दी जा सकती है और 60 साल के बाद भी दीक्षा नहीं दी जा सकती है, कि तब तक तो दूध का क्या क्या हो गया। 8 साल से लेकर तो 60 साल तक तो दूध में जावन दिया जा सकता है, लेकिन जितने जल्दी जावन देंगे उतना दही अच्छा जम जाता है। याद करिए वापस एक बार, चंडकोशी को चिटियां काट रही है, तीर्थंकर महावीर वहां से विहार कर जाने के बाद थी। और तीर्थंकर महावीर के पास उस समय भी अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान है। वो कहीं पर भी रह करके जान पा रहे थे कि चंडकोशी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जिक्र नहीं कि तीर्थंकर महावीर वापस चंडकोशी को संभालने के लिए आए, कि लोगों को समझाने के लिए आए कि तुम क्यों दूध चढ़ाते हो, चंडकोशी को चिटियां काटती हैं, नहीं आए। उसको चीटियों से बचाने के लिए तीर्थंकर महावीर नहीं आए, उसको कषाय से बचाने के लिए महावीर आए। और ऐसा कषाय से बचाया, ऐसा कषाय से बचाया कि चीटियां काट रही है लेकिन चंडकोशी को दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, कि उस अनुभूति में वो तन पर चीटियां चल रही लेकिन मन पर तो केवल प्रभु का ही राज है। मैं वाक्य अब गाथा में चल रहा हूं इसलिए समझाने में नहीं आऊंगा। आप सोच सकते हो अपने तन पर चिटियां काटती है कि अपने मन पर चिटियां काटती है। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए तुम्हारे और मेरे दुखी होने का कारण बताया। ये भक्ति का माहौल है और यहां कर्म सिद्धांत नहीं चलता है। भक्ति में कर्म नहीं चलते हैं, भक्ति में पुरुषार्थ नहीं चलता है, भक्ति में चलती है तो केवल भक्ति ही चलती है, वह दूसरा किसी का प्रवेश नहीं होता है। और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर में भक्ति में तन्मय होते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए दुखी होने का कारण बताया, प्रभु मैंने आपको सुना, आपका नाम सुना, आपकी कीर्ति सुनी, आपकी गाथा सुनी, लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हुआ। मैंने यह भी सुना था कि एक बाण जो आपका नाम सुन लेता है, आपकी भक्ति सुन लेता है, आपके गीत सुन लेता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरा दुख वैसा के वैसा रह गया है। मैंने सुना कि जो प्रभु का दर्शन कर लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, मैंने वो भी किया लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हुआ। मैंने ये सुना कि जो आपकी भक्ति करता है, पूजा करता है, उपासना करता है, उसको वरदान मिलते हैं और उसको भी दुख समाप्त हो जाता है। मैंने तीनों ही कर लिए लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। और दुखी होने का कारण केवल इतना है कि प्रभु मैंने तीन काम किए लेकिन हृदय में आपको भक्ति से धारण नहीं। दुखी होने का एकमेव कारण कि गुरुदेव को, परमात्मा को, तीर्थंकर को हृदय में भक्ति से धारण नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे असाता वेदनी का उदय है इसलिए मैं दुखी नहीं हूं। मेरी परिस्थितियां विपरीत है इसलिए मैं दुखी नहीं हूं। और चंडकोशिक को चिटियां काट रही है लेकिन चंडकोशिक दुखी नहीं है। अर्जुन माली को लोग मार रहे, पीट रहे, गालियां दे रहे, आहार नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, गालियां दे रहे, पर चंड कौशिक के समान ही अर्जुन माली भी दुखी नहीं है क्योंकि उसके हृदय में तीर्थंकर महावीर विराजमान है। और यही भक्ति का सूत्र है। ये जो पर्युषण चल रहा है, आज क्या है पर्युषण का पहला दिन है आज। जो मुझे हर साल ऑनलाइन सुनते हैं उनको पता होगा कि गुरुदेव की कृपा से चतुर्मास में एक पर्युषण नहीं होता है, तीन पर्युषण होते हैं, तीन संवत्सरी होती है। और पहला पर्युषण होता है मेरे आराध्य भगवान गुरुदेव का है। उनका जन्मोत्सव आपके लिए जन्मोत्सव है, गुरु भक्तों के लिए तो गुरु भक्ति का संवत्सर है। और आप देख सकते हो खड़े रह करके ये जो नजारा है, इसको टाइटल देने की आवश्यकता नहीं कि पर्युषण का नजारा है। यस और नो, ये नजारा किसका है? और ये बेने इतने शांति से बैठ जाए और किसी वॉलंटियर की जरूरत नहीं पड़े आगे सरकने के लिए, कहने के लिए कि बेने यहां श्रोता बनकर के नहीं आई, ये बहने यहां प्रवचन सुनने के लिए नहीं आई। आप भी बहनों को तो आप ही मत सोचना कि माना साहब हम खुद नहीं समझ रहे। और मैं फिर गारंटी से कहता हूं कि आप प्रवीण ऋषि को सुनने के लिए नहीं आए। कीर्तनकार गीता पर प्रवचन कर रहा था और उसने देखा कि पहली दूसरी में पंक्ति में बैठा हुआ एक व्यक्ति जैसा वह गीता पर प्रवचन करता तो उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहती, भाव विवल हो जाता, इतना भक्ति में, इतना भावावेश में आ जाता है। और कीर्तनकार को गलतफहमी हो गई, अहंकार आ गया, क्या मेरे प्रवचन का प्रभाव है कि व्यक्ति, इतना वयस्क व्यक्ति, इतना बुजुर्ग व्यक्ति मेरा प्रवचन सुनते सुनते भाव विवल हो गया है। दो तीन दिन देखा और उसको लगा कि जो मेरे प्रवचन का इतना भक्त है उससे थोड़ा परिचय कर लो। मैं क्यों परिचय नहीं करता उसका कारण आपको पता चल जाएगा। उसको लगा कि परिचय कर लो और प्रवचन पूर्ण होने के बाद उस व्यक्ति को पास में बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया, बहुत आदर से बुलाया और पूछा, भगत राज तेरा नाम क्या है? और उसने सुना ही नहीं देता, हेलो क्या कह रहा हूं, मुझे सुना ही नहीं देता। और उसका जवाब सुनकर के कीर्तनकार को चक्कर आने की बाकी रह गई कि मैं प्रवचन करता हूं, भक्ति में तन्मय होकर के इतना आवेश में आकर इतना आंखों से आंसू बहते, नहीं बोलते मुझे सुना ही नहीं देता, फिर इसकी आंखों में आंसू आते कैसे, ये भाव विवल होता कैसे? उससे रहा नहीं गया और उसने कहा इसको सुनाई नहीं देता है तो उसको लिख करके पूछा, बोलते तो आता था उसको केवल सुनाई नहीं देता था। कि फिर तू प्रवचन में इतना भाव विवल कैसे होता है, इतना भावाभिभूत कैसे होता है कि तेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, जब मेरा प्रवचन नहीं सुनता है तो इस अवस्था में तू पहुंचता कैसे। उस भगत राज ने जवाब दिया कि मैं तो केवल श्री कृष्ण को सुनता हूं, मेरे आंखों के सामने तो श्री कृष्ण और अर्जुन है और श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं और मैं उस गीता को सुनता हूं, मैं उस अर्जुन को देखता हूं, मैं मेरे प्रभु को देखता हूं। ये जितने भी यहां पर तुम बैठे हुए हैं ना, तुम कोई प्रवीण ऋषि के पीछे नहीं आए हुए, और यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी भक्ति है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि जिन घर के बच्चे अठाई कर रहे हैं, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, उन बच्चों ने, उन परिवारों का अभिनंदन करो कि जिन्होंने आज के इस माहौल में अपने बच्चों को गुरु भक्ति का वरदान दे दिया। उस गुरु भक्ति का वरदान की क्या महिमा होती है प्रवीण ऋषि जानता है। मेरे पिता ने मुझे गुरु भक्ति का वरदान दिया, मुझे सामयिक नहीं सिखाई, मुझे प्रतिक्रमण नहीं सिखाया मेरे पिता ने, लेकिन गुरु भक्ति का वरदान दिया। मां हुलसा ने निमिचंद को प्रतिक्रमण नहीं सिखाया, उसको स्वयं को ही नहीं आता था, क्या सिखाएंगी। थोकड़े नहीं सिखाए, उसको ही नहीं आते थे, कहां से सिखाएंगे। लेकिन उसके दिल में जो तीर्थंकर के प्रति भक्ति थी, गुरुदेव के प्रति जो भक्ति थी, उसने निमिचंद को दी। और इसलिए 1974 में कांदावाड़ी में, बंबई में आचार्य भगवंत का चतुर्मास, मेरे संयमी जीवन का पहला चौमासा, और गुरुदेव की ये सावन सुधी एकम, और उस दिन गुरुदेव के लोग गीत गा रहे थे, और जिस समय गुरुदेव बोलना शुरू हुए और गुरुदेव के आंखों में आंसू थे जब वो बोलना शुरू हुए, और जैसे उन्होंने कहा कि मां तेरे कारण से मैं आजा हूं, तूने यदि मुझे ये गुरु चरण न दिए होते हैं तो मैं यहां न होता। उस समय मुझे अकल नहीं थी, और गुरुदेव की आंखों में आंसू देख करके मेरे मन में आए, क्या गुरुदेव अभी भी मां ने याद करने रोवे हैं। लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से सुनता गया, तब पता चला कि याद के आंसू नहीं है, ये कृतज्ञता के आंसू है, ये मां के वियोग के आंसू नहीं, तो मां ने जो वरदान दिए उस वरदान के ये आंसू है। और तभी तो ये नजारा है। बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, और शायद आप मेरी इस वाक्य से आज सहमत हो गए होंगे कि हम जैसा सुखी भाग्यशाली इस समय और कोई नहीं है। यस और नो? यस। इतने गुरु भक्तों के बीच जीने का अवसर मिलना, इतने गुरु भक्ति के वाइब्रेशन के बीच जीने का अवसर मिलना, ये अलग से कहने की जरूरत है क्या कि आज ऐसे वाइब्रेशन मिलते नहीं है। यहां से बाहर पड़ते ही कौन से वाइब्रेशन मिलते आपको पता है? यहां से बाहर जाते ही पता नहीं क्या क्या कानों पर पड़ेगा, पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, पता नहीं। इसलिए पुनः एक बार कह रहा हूं कि हम जितना सुखी, हम जितना सौभाग्यशाली, हम जितना भाग्यशाली इस समय दुनिया में और कोई नहीं है। भक्ति की अनुभूति होना इससे बढ़कर के जीवन में वरदान और कोई होता ही नहीं है। तुम और मैं कई बार चक्रवर्ती बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? क्या बन चुके हैं? चक्रवर्ती बन चुके हैं। लेकिन चक्रवर्ती बनने के बावजूद भी संसार के चक्र से बाहर नहीं निकल पाए, कि चक्रवर्ती बनने के बाद वही जीव मोक्ष में जाते हैं जिनको चक्रवर्ती बनने के बाद भी भक्ति प्यारी लगती है। यदि तुम और मैं संसार में हूं तो इसका एक मेव कारण कि इसके पहले हमारे अंदर भक्ति का जन्म हुआ नहीं, और भक्ति का जन्म होने के बाद, श्रेष्ठतम भक्ति का जन्म होने के बाद उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु परमाते हैं, उसी भूमि या तीसरे भूमि में मोक्ष हो जाता है। सत्तट भव गर्म नातिकमय। आओ इस भक्ति का अभिनंदन करें, और जिनके मन में कोई कसक रह गई हो कि हम अठाई शुरू नहीं कर पाए, उनके लिए कल भी कहा था आज भी कहता हूं कि प्रमिला ताई ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया कि उसकी सौरभ इस समय पूरी दुनिया में फैल गई। नाम ही उसका सौरभ रख दिया गया था, और ऐसी बहू खोज करके लाई कि बहू ने भी कल अठाई शुरू कर दी, और किसी के मन में अभी विभावना जन्मती हो कि मर सब एक दिन लेट, ओके जाके तभी सवेरा चले तभी रास्ता। जिनको आज भी धारणा करनी हो उनके लिए दोपहर में 3 बजे साधना और धारणा दोनों की व्यवस्था यहां पर है। केवल आग्रह केवल इतना सा है एक 12 बजे के पहले पहले या तो संतोष जी पिपाड़ा को या तीर्थ शशि महाराज साहब को समाचार दे देना कि मैं धारणा के लिए आ रही हूं। अठाई के लिए आ रही हूं मत कहो, किसके लिए आ रहा हूं? धारणा के लिए आ रहा हूं। कि उन्होंने कल ही मैंने उनको पूछा और उन्होंने कहा कि मैं सब वी आर रेडी, और कल मैंने सेवा करने वाले को पूछा कि भाव मन है क्या? हाँ बोले मेरा सब मन है। अख्यासित बोले मन है। तो कल ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जिनको जिनको आज भी अठाई शुरू करनी है उनके अठाई के बचकर 13 तारीख को ही होंगे, लेकिन पारना उनका 15 अगस्त तक होगा। 7 के दिन ही अठाई बच गएंगे, लेकिन पारना 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर करेंगे। तो अभिनंदन आमंत्रण, जिन्होंने कल अठाई नहीं शुरू करी वो आज भी करना चाहे तो वेलकम, वेलकम, हार्टली वेलकम, दिल की गहराई से वेलकम। गुरु भक्ति का अवसर खोना नहीं, मिला है तो छोड़ना नहीं। शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। पूरा करना कि नहीं करना ये तुम्हारा और मेरा काम नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? वो चाहेंगे तो पूरी करा देंगे, वो चाहेंगे तो बीच में पारना करा देंगे। जब वो जो जो, जो शुरू करना अपना है, पूरा करना उनका काम है, वो टेंशन लेना ही नहीं। मुझे बंबई में, क्योंकि 92 का पहला चौमासा बंबई हुआ, तो मैं जैसा आज हूं वैसा ही उस समय था। हाथ में पेपर लेना नहीं, पहले तैयारी करनी नहीं, जाकर पट्टे पर बैठना और बोलना। तो अशोक जैन वहां पर जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने चार पांच आकर बार बार आकर के देखा कि हमारा सब पट्टे पर पेपर नहीं लेते हैं, लेकिन पहले होमवर्क करते हैं क्या? तो उन्होंने देखा ये तो बखान के पहले पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर छोड़ करके पट्टे पर आते हैं। तो उनके मन में एक जिज्ञासा जन्मी कि हमारा सब बोलते कैसे। और एक दिन आकर के बैठे मेरे पास, बोले मास्टर एक सवाल पूछने का मन हो रहा है। मैंने कहा पूछो भैया, आपको मैंने होमवर्क करते हुए देखा नहीं, कागज आपके हाथ में होता नहीं, और आप बोलते बिल्कुल धारा प्रवाह है, ये कैसे? मैंने उनको कहा अशोक जी, मैंने स्कूल के दिनों में भी होमवर्क नहीं किया, मेरा रिकॉर्ड है, फिर बोलते कैसे? मैंने कहा अशोक जी सिंपल बात है, अपने कुछ है नहीं जो जाएगी, अपने कुछ इज्जत है नहीं जो जाएगी, उसकी इज्जत है वो देखे डुबोना कि तिराना। वो तिराएंगे तो डुबोने वाला कोई नहीं, और वो नहीं तिराएंगे तो बचाने वाला कोई नहीं। पट्टे पर जाना गुरुदेव, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए अपने पर कंधे पर कोई बोझ है नहीं, रिलैक्स हो, टोटली रिलैक्स हो। इसलिए मस्ती में सोता हूं, मस्ती में रहता हूं। लोग मेरे साथ कुश्ती करते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ कुश्ती करता नहीं हूं। हमारे गुरुदेव ने 79 ईयर तक समय करी, कितने दिन तक? 79 ईयर। तो उनके जन्मोत्सव में हमें एक दिन तो समय करनी ही चाहिए। तो कल सभी ने समय की वेशभूषा के साथ, समय के अनुष्ठान के साथ कल सहभागी होना है, और परसों गुरुदेव का प्रियतम तप अयम्बिल तप, जिसके लिए नगर वाले मास्टर हैं। 28 मार्च के पहले या 28 मार्च को एक विराट विशाल संख्या में यहाँ अयम्बिल होते हैं गुरु भक्ति में। तो इस बार शनिवार 8 तारीख अयम्बिल दिवस, और 9 तारीख की तैयारी कर करके रखिए, 9 तारीख की तैयारी कर लीजिए। 9 तारीख का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, 9 तारीख का कार्यक्रम सामने के स्कूल में लगा हुआ विराट विशाल प्रांगण में होगा, और 9 तारीख की सभा में ऐसे अलग अलग नहीं बैठेंगे। 9 तारीख की 2.5 करोड़ नमस्कार महामंत्र का उद्घोष करने का एक अनूठा अनुष्ठान, परिवार के साथ बैठना है। किसके साथ बैठना है? परिवार के साथ बैठना है, अपने श्रीमान जी को, अपने सासू को, अपनी बहू को, अपने दीरानी को, अपने जेठानी को, अपने देवर को, अपने बेटे को, अपने बेटी को साथ में लेकर के बैठना ही, नहीं तुम्हारी नजर इधर उधर नहीं जाए। और परिवार के साथ जाप होगा, परिवार के साथ बैठना है, इसलिए इधर भाई इधर बहने, ये कल डिवाइडेशन 9 तारीख को डिवाइडेशन नहीं रहेगा। इधर भी भाई बहन साथ में बैठेंगे, इधर भी भाई बहन साथ में बैठेंगे, बोलना मत लेडीज एंड जेंटलमैन साथ में बैठेंगे, नथिंग। लेडीज और जेंट्स नहीं बैठते यहाँ, यहाँ पर कौन बैठते हैं? भाई और बहन बैठते हैं यहाँ, लेडीज और जेंटल जेंट्स यहाँ आते नहीं है। भाई बहन साथ में बैठेंगे और मस्ती से बैठेंगे, आस्था से बैठेंगे, और साथ में तांबे के या चांदी के या किसी भी लोटे में, ग्लास में पानी लेकर साथ में आएंगे, प्रासव जल साथ में लेकर के आएंगे, प्रासव जल साथ में लेकर के आएंगे, और वो जल साथ में लेकर के बैठेंगे, पोरसी कर करके आना है। कल शूज किसी ने भी पहन करके आना नहीं, और पहन करके आए तो गाड़ी में छोड़ करके आना, गाड़ी से बाहर शूज लाने नहीं, चमड़े की कोई वस्तु 9 तारीख को साथ में लानी नहीं। सबने बैठना है परिवार के साथ, 7:30 बजे अनुष्ठान शुरू होगा। कितने बजे? 7:30 बजे 7:31 को एंट्री का गेट क्लोज होगा, 7:25 को अनुष्ठान का स्तोत्र शुरू होगा। इसलिए आपको यदि आसन बिल्कुल मस्ती से आगे ग्रहण करना है तो आपने 6 बजे ही आसन ग्रहण करना है, और किसी ने किसी के लिए कुर्सी आसन रिजर्व रखना नहीं है। कुर्सी केवल बाउंड्री पर रहेगी, वीआईपी को भी, समर्पण चतुर्मास समिति के ट्रस्टियों को भी चेयर कहां रहेगी? बाउंड्री पर रहेगी। परिवार के साथ मस्ती से बैठिए, जो चेयर नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर बिल्कुल उपलब्ध रहेगी, लेकिन कहां रहेगी? बिल्कुल बॉर्डर पर। बाकी सब ऐसे ही बैठेंगे और 7:30 बजे जाप शुरू होगा। एक बार भी मैं आपको बोलूंगा नहीं कि जाप करो, नथिंग। अरे बोलो रे, नथिंग। और तुम बोले बिना रे करके बताना। 2.5 करोड़ सस्वर नवकास मंत्र का जाप होगा और उससे 4 जीवा पानी उसी समय अपने पोर्सी के बाद जैसे जाप पूरा होगा ग्रहण करना है, और वो नमस्कार महामंत्र का अमृत को ग्रहण करने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। उस पानी को, उसमें जो वाइब्रेशन है उसको पूरा काम करने के लिए 1 घंटा आपको देना ही होगा। संभाजी नगर की एक बहन ने, नॉन जैन बहन ने, उसको साथ में लेकर आए थे, जैन परिवार में काम करती थी, वो लेकर आई। उसने, उसके श्रीमान जी ड्रिंकर थे, वीडियो शेयर हो जाएगा कल आपके साथ, और उसने जाकर के वो नमस्कार महामंत्र का चार्ज किया हुआ अमृत जल श्रीमान जी को पीने के लिए दिया, और उस पल से श्रीमान जी की शराब छूट गई। ये संभाजी नगर की रिपोर्ट है, उसका वीडियो उस बहन ने सभा में आकर के कहा था। 4-5 दिन के बाद जब उसको लगा कि श्रीमान जी शराब नहीं पी रहे, ये नमस्कार महामंत्र है, और इस महामंत्र का सस्वर उद्घोष होगा, परिवार के साथ बैठना है, बाकी सारा काम पंच परमेश्वर देखेंगे, तुमने और मैंने देखना है। चलार्य मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोधम मंगलम, चलार्य लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतोधम लघुत्तमा, चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, 16 अगस्त, 16 अगस्त को जैनत्व की दीक्षा यहां पर होगी, अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होगा, गले में अरहम का पैंडल पहनाया जाएगा, जैसे गुरु पूर्णिमा पर गुरु मंत्र दीक्षा हुई वैसे 16 अगस्त को अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा, और इसकी जिम्मेदारी ली है अरहम स्पिरिट युवा वर्ग ने, बाहर उनका काउंटर लगा हुआ है, आप उसका ध्यान रख सकते हैं।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: आपली सजगता एखादी मुलगी किंवा मुलावर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखू शकते।
3: एखाद्या लैंगिक अत्याचार ग्रस्त मुला मुलींचं आयुष्य तुम्ही वाचवू शकता।
2: अशी कोणतीही अनुचित बाब आपल्या निदर्शनाला आली तर तात्काळ संपर्क साधा स्नेहालय संचालित स्नेह बाल आधार प्रकल्पाशी।
3: 77727505 किंवा 90110426495 या मोबाईल क्रमांकावर
2: आम्ही अहोरात्र उपलब्ध आहोत।
3: माहिती देणाऱ्याचं नाव उघड केलं जाणार नाही।
2: अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालकांच्या संरक्षण कायद्यानुसार कार्यान्वित स्नेह बाल आधार प्रकल्प, घनश्याम अपार्टमेंट, दत्त बेकरी समोर, चितळे रस्ता, अहिल्यानगर।

सीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो। आने वाला